गुड मॉर्निंग दोस्तों, संगीत वाला में आप सबका स्वागत है। और जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर। जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट मनीष और आज लाया हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपके लिए और आज की सुबह आपके लिए और बढ़िया बेहतरीन बनाने के लिए चुन के लाया हूँ मैं बहुत प्यारे गाने और प्लस बातें। यस, तो दोस्तों बिल्कुल, अगर दिन की शुरुआत बजरंग बली के नाम से हो जाए, हनुमान जी के नाम से हो जाए, तो और क्या चाहिए। तो चलिए और आज के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हम क्या आपको सुनाने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ आपको पास कोई टॉपिक लेके आते हैं या किसी कलाकार के बारे में बातें करते हैं। तो आज जो मैं लेकर आया हुआ हूँ वो कुछ बेहतरीन दो कलाकार हैं और जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, तो उनके बारे में आज बातें करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक गाना सुनवाता हूँ और फिर बताएंगे कि हाँ, ये आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो ज़रूर सुनिए और मुझे बताइए, अगर आप कॉल करके मुझे बताते हैं कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल मैं आपका नाम अनाउंस भी करूंगा और आपकी फरमाइश का गाना भी चलाऊंगा। तो सुनते रहिए ये गाना।

दोस्तों बिल्कुल मुझे कॉल आ चुकी है और मुझे बहुत ही बढ़िया लोगों का मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सही पहचानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप कितना अच्छे से सुन रहे हैं और कितना इंटरेस्ट है हमारे इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स में आप सबका, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हर्षमीत जी, आपने कॉल करके हमें बताया। और बिल्कुल ये गाना, हालांकि आपने बताया सलमान खान ने गाया, लेकिन साथ में आपने सिंगर का नाम भी बताया, तो बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, जुबिन नौटियाल जी के बारे में, उनकी सिंगिंग के बारे में, उनके गानों के बारे में, उनकी फिल्म में जो भी उन्होंने और जो अपनी पहचान बनाई है इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच हर्षमीत जी वंस अगेन। ये गाना बजरंगी भाईजान से हमने चलाया था, सलमान खान पे पिक्चराइज था, लेकिन इस गाने को गाया था जुबिन नौटियाल जी ने और प्रीतम जी ने। तो चलिए बात करते हैं जुबिन नौटियाल जी के बारे में, जानते हैं। एक्चुअली उनका बर्थडे है, लेकिन आज नहीं, कल है 14 जून, तो हम उनको एडवांस में जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और आप इसी तरह से हमारे को बहुत प्यारे प्यारे गाने हमें सुनाते रहें, हम दर्शकों का मन बहलाते रहें, हम यही दुआ करते हैं। और आप इतने बेहतरीन आवाज़ है आपकी, इतना मतलब हर वेरिएंट में आप गाते हैं, इंडियन क्लासिकल हो, पॉप हो, रॉक हो, आपने हर तरीके के गाने गाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन हर्षमीत भाई। और आप हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं, मैं आप सबको बता दूं कि हर्षमीत भाई जी हमेशा हर हफ्ते हमारे संगीत माला को सुनते हैं। जी, हमने बात करी है संगीत माला की, तो ये भी आपको बता दूं कि संगीत माला को आप तक पहुंचाने का जो जिम्मा है या जो जिम्मेदारी लेता है वो ICCA, इंडो कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन, जो सास्केटून में है और बहुत ही वेरियस फील्ड्स में काम करती है और अपने कम्युनिटी के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो उन्हीं की एक एक्टिविटी होने जा रही है 21 जून को, जो है इंटरनेशनल योगा डे, वो है लोकल गैदर मार्केट में। तो आप प्लीज़ सुबह 9 से 11 है और ज़रूर आइएगा वहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब आ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। कि उसमें योगा इंस्ट्रक्टर भी होंगे और स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर भी होंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन वो कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम और हमारा चलता है जो है सीनियर्स के लिए, तो वो है चाय पे चर्चा, वो कल कार्यक्रम है, तो उसमें भी आप सम्मिलित होगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसका भी आपको हाईलाइट दूंगा। जी हाँ, मेरे को वैल्यू मिल गया है। तो वो है लूथर रिवरसाइड टेरेस 915 सस्कैचवन क्रेसेंट वेस्ट में, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। जो भी सीनियर्स आपको यहाँ चाहे, वो एज ए पेरेंट्स आए हुए हों आपके पास, आप उन्हें ला सकते हैं। उनको बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलते हैं लोग, या जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग लोग या सीनियर्स रह रहे हैं, वो सब यहाँ पर सम्मिलित इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम होता है, इसे ऑर्गेनाइज़ करता है ICCA, तो मैं अब चाहूँगा कि आप सब लोग भी वहाँ पर पहुँचें। तो और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप ICCA की वेबसाइट पे भी जा सके, आप उसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। तो गाने की हर्षमीत जी ने फरमाइश की है, सलमान खान के भी बड़े फ़ैन हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका एक गाना मैं चलाऊं। उनकी एक मूवी आई थी जब प्यार किसी से होता है, तो वो गाना है पहली बार जब प्यार किसी से होता है। तो दोस्तों मैं ये गाना हर्षमीत भाई को की तरफ से चलाना चाहता हूँ और आप सब के लिए, और प्लीज़ सुनिए। और आप सब भी कॉल कर सकते हैं 3062425002 पर, और जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ हमें फरमाइश पे करके बताएं।

थैंक यू वंस अगेन अश्पित जी, बहुत ही प्यारा, अपने बहुत पुराने, थोड़ा पुराना गाना है सलमान भाई की मूवी का, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा गाना आपने चुन के हमें बताया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जुम्मन नौटियाल जी के बारे में, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमने बताया था कि उनका जन्म 14 जून 1989 और देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उन्होंने अपना सफ़र जो चालू किया वो 2011 में, उन्होंने एक टेलीविज़न म्यूज़िक रियलिटी शो एक्स फैक्टर में टॉप 25 पार्टिसिपेंट्स में रहे थे, उन्होंने ऐसे वहाँ से शुरू किया था। लेकिन उनके जो डेब्यू अगर इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहेंगे या मूवीज़ में कहेंगे, तो सोनाली केबल में उन्होंने मुलाकात सॉन्ग गाया था और मेहरबानी फॉर द शौकीन्स में। तो इसी तरह से उन्होंने अपने गानों का सिलसिला चालू किया, और मैं अब जो गाना आपके सामने लेने के आया हूँ वो है तुम ही आना फ्रॉम द मूवी मरजावा। बहुत ही प्यारी मूवी थी, चलिए सुनते हैं गाना।

क्या बात है, क्या बात है। मैं तो इस गाने में खो गया था। इतना प्यारा गाना जुबिन भाई ने गाया है, मतलब सॉन्ग सुन के वाकई में लगता है कि कितनी इंटेंसिटी इनकी आवाज़ में है। तो दोस्तों, यही मैं पढ़ रहा था इनके बारे में और जान रहा था कि कैसे सिंगर हैं ये। वाकई में इनकी आवाज़ आपने सुनी होंगी इनकी। कहीं इन्होंने एल्बम जो है भजन की एल्बम हो, चाहे मतलब धार्मिक हो, चाहे रोमांटिक हो, मतलब उन्होंने हर में अपनी आवाज़ दी है और कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसे प्रेजेंट किया है। और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे बजाते हैं, जैसे गिटार के बहुत माहिर हैं वो। तो अपना कोशिश करते हैं जब वो सॉन्ग गाते हैं तो गिटार खुद से वो प्ले करते हैं, तो बहुत ही मतलब उनका अलग ही अंदाज़ है। तो दूसरे अगले दोस्तों चलते हैं अगले गाने की ओर। एक मूवी आई थी जो काफ़ी फेमस रही थी, कबीर सिंह, तो उसका गाना है तुझे कितना चाहूं। तो वो सुनते हैं दोस्तों, और आप भी, आपका इंतज़ार है मुझे जब आप मुझे कॉल करें और अपने गाने को हमें बताएं। हालांकि मुझे कॉल्स आ रही हैं और उनकी फरमाइशें भी आ रही हैं, तो मैं ज़रूर ब्रेक के बाद वो गाना चलाऊंगा।

0: क्या बात है दोस्तों, तुझे कितना चाहें हम, इतनी प्यारी आवाज़, इतना प्यारा गाना, और हिला के रख दिया इस मूवी ने भी और गानों ने भी। इस मूवी के सभी गाने बहुत फेमस रहे। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे आप ही के कार्यक्रम संगीत माला में। जी हाँ, और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने।
1: For the TD Sask Jazz Fest from July 5th to 11th in beautiful Saskatoon. Catch headliners Modest Mouse on July 7th, Bruce Coburn on July 10th, and Noah Cyrus on July 11th, along with so much more on the TD main stage at Victoria Park. The TD Sask Jazz Fest is the city's favorite summer festival, and you'll want to say you were there. Tickets on sale now at saskjazz.com.

0: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all the ladies and the gentlemen, they all ask how and where. The Broadway Shoe Repair. The Broadway Shoe Repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर। और मैं हूं आपका होस्ट मनीष, और आपके पास साथ लाया हूं, आपके लिए लाया हूं आज बहुत प्यारे प्यारे गाने, जुबिन नौटियाल जी के गाए हुए गाने, फिल्मों के गाने दोस्तों। और मैं बता दूँ कि जैसे कि कार्यक्रम तक पहुँचा पा रहे हैं जो ICCA इंडिया कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन, जिनके आने वाले दो कार्यक्रम जो होने वाले हैं, मैं उनकी अपडेट आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है कल यानी संडे चाय पे चर्चा होने वाली है, जो सीनियर्स के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा होती है, उनके साथ बहुत से एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो ये कार्यक्रम कल है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और वेन्यू है लूथर रिवरसाइड टेरेस 915 सस्केच्वन क्रेसेंट वेस्ट सास्केटून। तो प्लीज़ आप आएँ। और इसके अंदर एक स्पेशल एक तो थीम है, जो कल का थीम है वो फादर्स डे है, और उन्होंने साथ में हाईलाइट प्रोग्राम की हाईलाइट्स में दिया है कि डॉक्टर शुक्ला जो है एक स्पेशल प्रेजेंटेशन या वो बात करेंगे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, स्पेसिफिकली बीपी और डायबिटीज़ के बारे में। तो जो सीनियर्स हैं वो प्लीज़ ये ज़रूर आएँ और अटेंड करें, उनको काफ़ी कुछ जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। और जो फ़न एक्टिविटीज़ हैं वो प्राची जी करने वाली हैं, तो बहुत सा फ़न मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप आएँ और ये ज्वाइन करें। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑल सीनियर से जो हमारी कम्युनिटी के यहाँ पे रहते हैं, प्लीज़ आप आएँ और इसमें इसको प्रोग्राम में शामिल हों। और अगला कार्यक्रम जो है वो है 21 तारीख को जून 21st 9 से 11 गैदर लोकल मार्केट में, और ये कार्यक्रम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो उसके अंदर योगा का सेशन भी है, स्पिरिचुअल सेशन भी है, और काफ़ी अच्छा मतलब सीखने को मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर आएँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये दोनों इवेंट्स, और आप इसमें आ सकते हैं। और सिर्फ आपको एक RSVP करना है, या ICCA में आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या एक नंबर डेडिकेटेड नंबर है 6399941008 पर, तो मैं भी आपको अपडेट दे सकता हूं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और फरमाइश की ओर। अभी हमको कॉल आई कुमार जी की, और वो सुनना चाहते हैं गाना आजा तेरी याद आई फ्रॉम द मूवी चरस। तो ये काफ़ी 1976 की मूवी है, और जैसे धर्मेंद्र और आई बिलीव उनके साथ जो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले गाना सुनते हैं। हाँ, हेमा मालिनी।

क्या बात है, क्या गाना है, आजा तेरी याद आई, जिन्हें आनंद बख्शी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जिन्हें गाया है और म्यूज़िक कंपोज़ किया है, और ये चरस मूवी का गाना था। थैंक यू सो मच कुमार जी वंस अगेन, बहुत ही प्यारा गाना आपने हमें आज सुनवाया, और इसी तरह से आप सब हमें प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश भेजते रहें, जिससे वो गाना हम चला सकें और हमें भी मौका मिल सके वो गाने सुनने का। तो अगली फरमाइश जो है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं किरण जी, उन्होंने ये फरमाइश की है, और वो हर हफ्ते हमारे कार्यक्रम को सुनती हैं, तो मैं उन्हें इसलिए रेगुलर लिसनर ही बोलूँगा, और उन्होंने ये गाने की फरमाइश की है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, फ्रॉम द मूवी नील कमल। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्या प्यारा गाना था तुझको पुकारो मेरा प्यार। और किरण जी, इसी तरह से आप हमें कॉल करते रहा करें और अपनी फरमाइश हमें भेजते रहा करें। तो अगली फरमाइश का गाना है दोस्तों, ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं जो इंडिया से यहाँ आए हुए हैं हमारे पास हमें मिलने के लिए, तो वो उन्होंने फरमाइश की है। तो उनका नाम है अशोक जैन एंड शैल जैन, तो मैं उनके फरमाइश का ये गाना चलाना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो चलिए सुनते हैं और आप सब भी इस गाने को सुनिए। जस्ट अ मोमेंट।
1: तेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में।

तो दोस्तों क्या करें, गाना सुनने का तो बहुत मन है पूरा, लेकिन समय की सीमा होती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन शैल जी और अशोक जी का, उन्होंने ये गाना हमें फरमाइश की, बहुत ही प्यारा गाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने वापस आते हैं जुबिन नौटियाल जी की तरफ, क्योंकि अब किस्सा चालू होगा आगे उन्हीं के गानों का। तो एक गाना बहुत ही प्यारा है जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो था मूवी आई थी काबिल, और उस मूवी भी इतनी बेहतरीन थी जिसमें ऋतिक रोशन और यामी गौतम ने बहुत ही प्यारा कैरेक्टर निभाया था, जिसमें दोनों ब्लाइंड थे, और मतलब उनकी एक्टिंग तो कमाल ही थी लेकिन गाना भी उनके कमाल थे। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, किसी से प्यार हो जाए।

दोस्तों आपको याद आ रहा होगा इस गाने का जो लिंक है, अगर कहा जाए तो ये ओरिजिनल गाना, जी हाँ बिल्कुल, ये ओरिजिनल गाना था जूली मूवी से, जिसे किशोर कुमार ने गाया था। कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और उस गोल्ड का जो यूज़ किया है इस मूवी में इस गाने को लेके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुबिन नौटियाल जी ने ये गाया है। तो चलिए दोस्तों अगला गाना सुनते हैं, रातां लंबियां, फ्रॉम द मूवी शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने काम किया था। ये मूवी भी बहुत ही बेहतरीन थी, और कहते ना कि मूवी तो बेहतरीन होती है लेकिन उसे और बेहतरीन बनाते हैं उसके गाने। तो ये वन ऑफ द सॉन्ग्स उस मूवी का था जो बहुत ही प्यारा था।

0: क्या बात है, राधा लंबिया रे कटीना संग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था ये। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं एक गाना। ये फरमाइश का गाना है हमारे पास, और ये फरमाइश की है निहारिका नारायण ने, और ये मूवी आई थी सैयारा। तो अभी रिसेंट की मूवी है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, मतलब अच्छी पॉपुलर मूवी रही हुई। और इसका सॉन्ग था ये बर्बाद। तो चलिए ये सुनते हैं गाना, और
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

0: थे, क्या बात है, क्या बोल हैं। ये मूवी काफ़ी फेमस है यंगस्टर्स के बीच में आई बिलीव, और इस गाने भी जो इसके थे बहुत ही प्यारे, क्या बेखूबी बखूबी गाए हैं जुबिन भाई ने ये गाने। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वंस अगेन निहारिका एंड आर्यन का, कि बहुत ही प्यारा गाना आपने ये चूज़ किया, और इस तरह से आप अपनी फरमाइश में भेजते रहें। एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारा स्टूडियो का नंबर है 3062425002 पर, और आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपका गाना तुरंत प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप ही के साथ सुनेंगे और प्यारे प्यारे गाने ओनली ऑन 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर संगीत माला के कार्यक्रम में।
1: स्प्रिंग फ्लिंग इज बैक ऑन सैटरडे जून 13th फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। Come celebrate spring on Broadway with merchant sales and specials, over 100 street vendors, live music, free yoga, great food, and family-friendly games. Love Broadway as much as we do? Now you can score your own Broadway bunny hug, with proceeds going right back into the community events you know and love. Brought to you by the Broadway Business Improvement District. Visit BroadwayYXC.com for details.
2: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly, and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
3: I feel like pizza.
4: I feel like beer.
5: This does not have to be a paradox.
6: Who are you?
5: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I try to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
7: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
5: The gold, eh?
2: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with REMAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
8: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations, and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
0: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और मैं हूं आपका होस्ट मनीष, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, जिसके प्रायोजक हैं ICCA इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। जी हाँ, तो आज हम सुना रहे हैं गाने जुबिन नौटियाल जी के गाए हुए गाने, जो कि उन्होंने हिंदी बॉलीवुड में अपना जो नाम बनाया है इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाकर। आज उनमें से कुछ चुन के हमें गाने लाए हैं अब तक। तो अगला गाना जो सुनवाने जा रहा हूँ वो है रब्बा जानदा फ्रॉम द मूवी मिशन मजनू। तो ये भी एक और ट्रू स्टोरी पे ये मूवी थी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना ने काम किया था। लेकिन ये गाना जो रब्बा जानदा है, ये गाना जुबिन नौटियाल और भी उनके साथ कुछ सिंगर्स थे, उन्होंने गाया था। तो चलिए सुनते हैं।

0: क्या बात है इस गाने की, बहुत ही प्यारा गाना था ये रब्बा जानदा। अगला गाना जो मैं चलाने जा रहा हूँ वो है मूवी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड का एक गाना आया था मतवारे, जो अर्जुन कपूर जिसमें थे उस मूवी में। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और उसमें जुबिन नौटियाल जी का साथ दिया सना मोदियोती और अमित त्रिवेदी ने, तो सुनते हैं।
1: गाने सुनने का नया तरीका सारे गामा कारवा।

0: क्या बात है, क्या प्यारा गाना, मस्त टाइप का सॉन्ग था, मेलोडियस भी कह सकते हैं, और जैसे कन्वर्सेशन हो रही और वो गाना चल रहा था। कहते ना कि एक सिंगर हो और गाना सोलो गा रहा हो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जब उनके साथ देने वाला कोई हो तो वो गाना और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये गाना उस तरीके का था कि एक ड्यूट सॉन्ग था, तो बहुत ही प्यारा। अगला गाना है मेहरबानी फ्रॉम द मूवी शौकीन, जिसमें ये गाना अक्षय कुमार पे पिक्चराइज किया गया था, और इसके गाने के कंपोज़र हैं आर्को और सिंगर अगेन हमारे जुबिन नौटियाल जी। चलिए सुनते हैं गाना।
1: खुद गर्ज में है गीत तू, तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू।

0: casa ta, e kështi të ri, kina ram mira. E tu i to e deva fa, tu barish mi.
1: क्या बात है फ्रॉम द मेहरबानी फ्रॉम द मूवी शौकीन से बहुत ही प्यारा गाना था. चलिए अगला गाना सुनवाते हैं. एक स्पेशल फरमाइश आई है और हमारे स्पेशल मित्र की तरफ से, वो हैं हमारे उमेर भाई. और वो अगला हमारा जो शो होता है, यानी जो हमारे लाइव शो जैसे संगीतमाला है, ऐसे ही जो नेक्स्ट शो होता है वो पाकिस्तान की तरफ से होता है और सुर और सास उसके वो होस्ट हैं. और उन्होंने स्पेशली फरमाइश की है गाने की, 1942 लव स्टोरी का ये गाना कुछ ना कहो, तो डेडिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच उमर भाई सुनवाने के लिए.

0: क्या बात है, क्या प्यारा गाना था, कुछ ना कहो। इस मूवी के तो हर गाने कहा जाए तो बहुत ही प्यारे गाने थे, और ये गाना कुछ खास ही था। थैंक यू सो मच वंस अगेन उमर भाई गाने के लिए और फरमाइश के लिए। चलिए आगे चलते हैं एक और फरमाइश पे, जो स्पेशल फरमाइश है आई है शेफाली और आर्यन की तरफ से, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही, जो राजकुमार राव के ऊपर पिक्चराइज है और इसके गाने के बोल हैं तू है तो। या ये गाना भी बहुत ही प्यारा गाना था इस मूवी का। इस मूवी के भी गाने काफ़ी फेमस रहे हैं और काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी मिलियंस में रिस्पॉन्स मिला है। तो चलिए सुनते हैं।
1: कौन सी फीलिंग?

क्या बात है, क्या प्यारा गाना था तू है तो, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही। थैंक यू सो मच शेफाली एंड आर्यन फ्रॉम सास्केटून। इसी तरह से आप लोग अपनी फरमाइश अपनी भेजते रहें। अगला गाना जो सुनवाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है जादुई बोल हैं गाने के, और फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार। तो सुनते हैं गाना और बढ़ते हैं आगे। तो अभी भी कुछ समय बाकी है दोस्तों, कॉल कीजिए 306-342-5002 पर और आपका गाना मैं तुरंत प्ले करूँगा।

12:30 है हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। दोस्तों ये गाना है तुम मेरी दिल लगी फ्रॉम द मूवी रेड 2 और जो पिक्चराइज किया है अजय देवगन और वाणी कपूर पे, जिसमें जिसे गाया है जुबिन नौटियाल जी ने। और चलिए सुनते हैं इस गाने को।

तो दोस्तों लास्ट गाना मैं सुना रहा हूँ जो मैं नौटियाल जी का नया सॉन्ग 2025 का एक मुझे तुमसे नज़र से, और ये गाने के साथ ही मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा, जी हाँ, और इसी नेक्स्ट सैटरडे ठीक 11 बजे आपके साथ होंगे हम, और 12:30 तक आप प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर ये गाने सुनिएगा संगीत माला पे, और जो आप तक पहुँचा पाते हैं ICCA इंडिया कनाडा कल्चरल स्टेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आवर सॉन्ग।

अस्सलाम वालेकुम सास्कटून, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उमर। और हमारी आज की नशिस्त जो है वो ज़्यादा ही एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत हो गया है। मौसम खुल गया है, सबका निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शहर के अंदर हो रही हैं। जो लोगों ने प्लान की हुई थी, शुक्र है कि आज के दिन में कुछ प्लान ख़राब नहीं हुए। कुछ बहुत जो है दो तीन अच्छी जो एक्टिविटीज़ जो शहर में हो रही हैं उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। ब्रॉडवे पे आपके जो है वो एक आउटडोर स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है। कल जो है वो एक पार्क में आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों के लिए रखा है, वो उसके लिए ज़रूर बाहर जाएं। और बच्चों को जो है वो दिन की रोशनी जो है वो काफ़ी दिन से जो है वो सूरज कुछ अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ पा रहा था, और बारिश का सिलसिला जो था वो जारी था, और सब दुआगो थे कि जो है वीकेंड अच्छा हो जाए। और जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो वीकेंड अच्छा हो गया और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, अखबार जो है वो चल रहा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और कनाडा उसमें शामिल है, कनाडा को होस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो जो फुटबॉल है या सॉकर जो है उसकी जो है रानाइयाँ और खुशियाँ जो है वो दोबारा हैं। कनाडा ने अपना जो पहला मैच खेला वो 1-1 से बराबर रहा बॉस्निया हर्जेगोविना के दरमियान, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ मिस हुआ, उस पर काफ़ी कुछ तबसरा कर सकते हैं। हम किसी एक दिन जो है वो सॉकर एक्सपर्ट को लेके आएंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या सिलसिला चल रहा है। कुछ लोगों को जो है वो क्रेज़ चल रहा है इस वक्त जो है पूरे मुल्क में, और उसकी वजह से मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में चल रहा है क्योंकि सॉकर वर्ल्ड कप जब भी आता है तो क्रेज़ हो जाता है। एक इसकी बड़ी एक और अच्छी बात है, जो लोग और जो ममालिक उसमें शामिल नहीं भी होते उनकी एक फेवरेट टीम्स होती हैं और फेवरेट फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, जर्सियाँ बिक रही होती हैं और एक बिज़नेस का एक भरमार होती है। आप अगर देखें तो बहुत सारे जो फैंस हैं अपनी टीम्स के वो कनाडा, यूएस, मेक्सिको में आए हैं और जो है वो उसमें इकॉनमी को जो है वो बूस्टअप मिल रहा है। इतने हालात जो हैं वो जो दुनिया के चल रहे हैं उसके दरमियान एक खुशी का एक माहौल है। उसके साथ एक विमेन वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्रिकेट का विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मध्यम इसलिए है क्योंकि वो जो है उसकी वजह सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप है, और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें जो है पूरी दुनिया उसमें शामिल हो जाती है। यहाँ बैठ के हम भी जो है वो किसी भी टीम को, प्लेयर आपके होते हैं, फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, उसकी वजह से टीम्स जो हैं वो अपने आप जो है टीम्स को फेवरेट करार देती हैं और मैच के ऊपर तबसरा होता है कि और इसकी एक और बड़ी है कि 90 मिनट्स गोज़ टू फास्ट। ठीक है जी, हम उसको वक्त को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वक्त रुकेगा नहीं और वक्त चलता रहेगा, और उसके साथ साथ जो है फीफा वर्ल्ड कप चलता रहेगा। यूएस ने भी अपना पहला मैच जीता 4-1 से, और आज दो बड़े एक्साइटिंग मैच होने जा रहे हैं और उनकी जो उसकी वजह से जो है एक जो है ना एक वाइब नज़र आती है। हर वक्त लोग सोचते हैं कि सास्कटून एक छोटा शहर है लेकिन उसके अंदर भी एक वाइब्स नज़र आती हैं, किस जगह पे थिएटर्स में जो है वो मैच देखा जा रहा है और बल्कि दिखाया जा रहा है, और किस जगह मैंने देखी है कि ओपन स्क्रीन्स भी लगी हैं और जो है वो मैच चल रहा है। आज जो दो मैच हैं वो ग्रुप बी का कतर और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान है, जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। हमारे वक्त के मुताबिक वो 1 बजे है, और जो उसके बाद जो एक्साइटिंग मैच है वो कुछ ज़रा ज़्यादा है, वो है ब्राज़ील और मोरक्को। मोरक्को इस वक्त जो है वो राइजिंग पावर है, इट्स मैं कुछ थोड़ा सा कहूँगा कि डार्क हॉर्स भी हैं। उन्होंने अपने जो है ना मैच पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी दिए हैं, तो वो एक्साइटिंग होगा और वो 4 बजे होगा मैच। उसके बाद है हेटी और स्कॉटलैंड का मैच है, वो 7 बजे होगा। इस पे ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिसाब से जो है वो स्कॉटलैंड की टीम कुछ कर दे बेहतर है, बट बैलेंस्ड मैच है, बैलेंस्ड मैच है। एक होता है कुछ टीमें फेवरेट होती हैं जहाँ पे
अक्सर होता है कि जर्मनी खेले या ब्राज़ील खेले या अर्जेंटाइन खेले या स्पेन खेले, तो वो आपको कुछ चीज़ों ने आपको लगते हैं कि यार ये प्लेयर्स और ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी आपको एक्साइटिंग लगती हैं। काफ़ी सॉकर पे बात हुई है और इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो आज की जो है वो हमारी एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो आप लोगों ने हमारी पोस्ट तो देख ली होगी पाकिस्तान कनाडा कल्चर एसोसिएशन की तरफ से कि हम फिर से एक दफ़ा फिर बसंत का माहौल बनाने जा रहे हैं और बसंत जो है वो हमारी इस दफ़ा फिर रोटरी पार्क में होगी और इस वक्त 28 जून को होगी समझता हूँ और संडे का दिन होगा, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सब में तशरीफ़ लाना है और एक्साइटिंग जो ये हमारी बसंत फेस्टिवल होता है उसको देखना है। इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सीफाई किया है, बहुत सारी कम्यूनिटीज़ उसमें शामिल हो रही हैं और हम जो भी इंडिजिनस मंथ चल रहा है उसको सेलिब्रेट करेंगे, फिलिपिनोज मंथ को सेलिब्रेट करेंगे और हम साथ सिख कम्युनिटी का जो सिख हेरिटेज मंथ है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। बसंत का बेसिकली त्यौहार जो हमारे लोग हैं वो जानते हैं कि वो स्प्रिंग के साथ शुरू होता है, लेकिन स्प्रिंग जो है वो इस वक्त बारिशों में घिरी हुई थी तो हमारी करते करते स्प्रिंग जो है वो समर में आ गई है, लेकिन सास्कातून में जो समर में अगर खुल के अगर आपको कोई फेस्टिवल मिल जाए तो वो एक और एक्साइटिंग माहौल बन जाता है और रिवर लैंडिंग की जो खूबसूरती है वो उसको और चार चांद लगा देती है। उसके साथ बाउंसी कैसल्स हैं, फूड स्टॉल्स होंगे और सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम को हम जो है वो आगे लेके जा रहे हैं अपने एक्साइटिंग स्पॉन्सर्स के साथ और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी एक जो है वो हम पेश करते हैं एक सॉन्ग, क्योंकि मैं अगर बातें करता जाऊंगा तो वो बातें हो जाएंगी लंबी और जो है वो लंबी बातों में चीज़ें जो हैं वो कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो मिस ना हो जाएं, तो बहुत सारी बातें करने वाली थी इसलिए जो है हम अपने प्रोग्राम में दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का जिक्र करेंगे और कुछ गाने भी चलाएंगे ताकि बसंत का माहौल हमने अभी से मालूम होना शुरू हो जाए और एक पहचान बन जाए कि हम जो है वो बसंत फेस्टिवल में जा रहे हैं। बसंत फेस्टिवल के साथ साथ हम जो है वो उसका जिक्र इस तरह शुरू करते हैं कि एक बहुत ही रिमिक्स गाना है और मेरा ख्याल है कि हम सब का वो फेवरेट और पसंदीदा है, इसलिए हम उसको आज पेश करेंगे। उसका नाम है जश्ने बहारां और सुनते हैं एक बहुत एक्साइटिंग रिमिक्स आवाज़ में जश्ने बहारां।

बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और जश्न बहारा ने, इसलिए मैंने कह दिया था कि वो जाने बहारा जो है वो जश्न बहारा ही होता है, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। को बहुत सारा ये ख्याल कर रहे होंगे कि मैंने गाने का मतलब जो है वो चेंज कर दिया। मैंने गाने का मतलब नहीं चेंज किया, उसका ज़ौक चेंज करने की कोशिश की थी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपके जाने बहारा साथ हो तो फिर जश्न बहारा जो है वो वही फील होता है। अगर अगर दिसंबर की जो है वो सर्दी हो या जून की गर्मी हो। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हमने जो सबसे ज़्यादा जो हमने आज गुफ्तगू करनी है और आपको याद कराना है कि हमारी जो जश्न बहारा जो है वो आ रही है 28 जून को, और उम्मीद करते हैं संडे का दिन होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सब वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। 11 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रोग्राम का सिलसिला रहेगा, उसमें मुख्तलिफ़ एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेज हैं और उसमें हम इंडिजिनस परफॉर्मेंसेज हैं, फिलिपिनो हैं, लातिनो हैं, पीरू हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, पंजाबी हैं और श्रीलंकन हैं और ख़ास ख़ास पाकिस्तानी तो होंगे उसके अंदर। तो हम सब जो हैं वो इसमें अपने प्रोग्राम को अपने चार चांद लगाएंगे और हम प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इसको हम चाहते हैं कि हम आप सबकी जो शिरकत है वो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम को हम एक सिटी वाइड एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो के मंसूब होगा पाकिस्तानी बसंत से। और गुड्डी डोर तो होगी, गुड्डी डोर का स्टाइल तो ख़त्म नहीं हो सकता, उसके बगैर जो है वो सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता, हमारी गुड्डी डोर जो है वो जारी रहेगी। आपको अगर कोई कहना है, कुछ कमेंट करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3062425002 पे, और आप हमें अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, बसंत के बारे में बता सकते हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, और हम जो है वो और आपको बताएंगे कि हमारे और कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन उसको जाने से पहले सबसे ज़रूरी है हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा तो वो है सेवर सुपरमार्केट का, जो हमारे साथ इस सफ़र में, बसंत के सफ़र में हमारे साथ हमेशा से शामिल हैं, और वो हमेशा से जो है वो इकट्ठे जो हैं वो हमारे साथ उसमें रहते हैं, और हमेशा जो उनके ओनर हैं अमजद रफ़ीकी साहब वो हमें हमेशा इनक्रेज करते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। आज हमारे साथ जो हैं उसमें जो हमारा साथ है वो लाइव बारबेक्यू का, वो बारबेक्यू जंक्शन का है, तो वो उसके एक्साइटिंग बारबेक्यू जंक्शन को मेरा ख़्याल है महजूज़ होने के लिए हमें जो है वो अपना काम थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमने लाइव बारबेक्यू खाना है रिवर लैंडिंग में, दोपहर की शाम, दोपहर हो, सूरज आपके सामने हो और एक खूबसूरत माहौल हो और फेस्टिवल चल रहा हो और उसके अंदर आप जो है वो बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू खा रहे हो, तो जो है चीज़ें जो हैं वो दुबाला हो जाती हैं। उसके साथ हमारे साथ हमारा ताबुन जो है वो हमारे साथ है सिटी ऑफ सास्कातून का। सिटी ऑफ सास्कातून ने भी हमारा पिछले साल भी साथ दिया था, इस साल भी साथ दे रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ जो हैं जो हमारे बड़े जो इस बार स्पॉन्सर्स और भी ज़्यादा हैं वो हैं सास कल्चर, वो हमारे साथ शामिल हैं। इसके साथ सास टेल, उनका भी बहुत शुक्रिया, वो पिछले दफ़ा भी हमारे साथ थे, इस बार भी हमारे साथ उनका साथ रहा है, और उसके साथ साथ जो है USW ने जो है वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है और वो हमारे साथ शाना बशाना है और वो चीज़ों का सिलसिला चलता रहेगा। इस सारे सिलसिले को हम देखने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि हम देखें कि हमने इस प्रोग्राम को और कितना वाइब्रेंट बनाना है। इसमें जो कम्युनिटीज़ हमारे साथ शामिल रहेंगी वो हमेशा हमारे प्रोग्राम को जो है खूबसूरत और बेहतरीन बनाते हैं। अभी हम एक पश्तो गाना है उसको चलाएंगे, और क्योंकि ये भी एक सिलसिला है जो हमारे साथ हमेशा हमारी एक ज़ुबान का एक हिस्सा है और हमारे मुल्क की एक पहचान है। अक्सर हमारे जो है जो पख्तून और पश्तो बोलने वाले हैं उनके लिए एक हमेशा अमेजिंग रहता है कि कुछ चीज़ों मैं सोच समझ के लाता हूँ कि कौन सी चीज़ आपने जो है मुझे भी समझ आती है तो मैं उसको चला पाता हूँ। लेकिन अभी हम एक पश्तो गाने को जो है प्ले करेंगे, और वो भी एक लेटेस्ट सॉन्ग है रशा का नाम।

वेलकम बैक जी। और ये था जो गाना था वो मेरा ख्याल है एवर लास्टिंग आफ्टर एवर सिंगिंग एवर, आप इसको कुछ भी कहें, इसकी आवाज़, इसकी इसकी जो मेलोडी है वो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जो है वो एक बहुत खूबसूरत इसकी मेलोडी है। इससे मुझे हमेशा याद आता है वो आलमगीर का ये गाना जब बना था तो इसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि ये गाना गाते गाते गाते दरख्त पे चढ़ गए थे और दरख्त से फिर गिर गए थे और इनकी टांग टूट गई थी। तो इतना इतने पैशनेट थे इस बारे में और जो है वो इस गाने को चल रहा था। लेकिन अब आते हैं अब अपनी बसंत के अपने उस त्यौहार की तरफ जो हम बसंत को हम मनाना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं और बसंत की जो जो वाइब्स हैं हम उनको वापस लाना चाह रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बसंत के जो सॉन्ग्स हैं उनको हम चलाएं और ताकि हमारे अंदर एक वो जोश और जज्बा जो बसंत का है विच वी एक्चुअली कॉल्ड ओवर हियर अ स्प्रिंग फेस्टिवल और जश्न बहारा, इट्स अ काइट फेस्टिवल, पर हमारे लिए वो आज भी बसंत है। सुनते हैं बसंत का बहुत ही खूबसूरत फिर आई बसंत।

0: test over 1,000 tomatoes?
1: और इसे कहते हैं कि बसंत आ गई है. तो अगर बसंत का माहौल बन जाए और ऐसी वाइब्स आपको नज़र आने शुरू हो जाए और ऐसे गाने चलना शुरू हो जाए, तो वो अंदर से जो है ना वो डोर गुड्डी जो है ना वो बाहर आ जाती है और दिल करता है कि वो उस माहौल में वापस चले जाएँ जिसमें हमारी बसंत का त्यौहार जो है वो बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है. इसमें एक बहुत अच्छी एक खूबसूरत बात थी कि इसकी डोर और पतंग बड़ी दूर तक जानी है पर दिल ना किसी का दुखाना. ये बड़ा ज़रूरी है कि आप पेचे भी लड़ाएं और उसको फेस्टिवल को मनाएं भी, लेकिन इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए. दिल आज़ारी अगर होगी तो वो फेस्टिवल का वो मज़ा जो है वो दुबाला नहीं होता. अब इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो है वो सब जो है वो और कंसिडर करें कि रोटरी पार्क को हमने वो लाहौर का एक ऐसा मरकज़ बनाना है कि सास्कटून को पता है चले कि लाहौर में बसंत ऐसे होती है. और हम इसकी और बसंत को वाइब करने के लिए, ताकि आप लोग भी अपनी तरफ जो है वो गाने शाने चलाएं और गाड़ियों में इसके लिए भंगड़े शंगड़े डालें और अपने आप को तैयार करें कि हमने बसंत मनानी है. जब मैंने लाहौर का जिक्र करता हूं तो वो दिल में एक गुदगुदी होती है कि और अंदर से जो है वो पंजाबी लाहौरी जो है ना वो बाहर आने की कोशिश करता है. तो हम उसी की नस्बत से जो है वो गाने को चलाते हैं. कुछ चीज़ों के लिए जो है वो अक्सर लोग इस चीज़ पे बहस होती है कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा के गिरदनवा के लोग जो हैं वो सब लाहौर ही आते हैं इस बसंत को मनाने के लिए. तो सुनते हैं लाहौर की बसंत.

कह रहे हैं कि आज सजिया लाहौर से आ रहा थे, आज गुडियां बनाइए उड़ाइए, हम लाहौर को यहाँ पे ला सकते हैं, लाहौर की तरह मना सकते हैं, लेकिन लाहौर जैसा नहीं मना सकते। ये हम वो हमें जो है यहाँ तो प्रूव करना है, तो यहाँ हमें बताना है कि हम कैसे बना सकते हैं कि लाहौर की और इसकी जो है सारी जो खुशियाँ हैं वो तब होंगी जब आप सब हमारे साथ शामिल होंगे, तब हम उसे बताएंगे कि लाहौर में बसंत कैसे मनाते हैं और उनकी खुशियों को कैसे दुबाला करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बसंत के त्यौहार से और बसंत की खुशियों से जुड़ जाती हैं। जब मैं बसंत की बात करता हूं तो उसमें एक बहुत सारा जो है वो एक फैक्टर यही आता है, और यही हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि अपने जो हैं लोकल वेंडर्स को यहाँ पे लेके आएँ और उनके साथ जो है उनको उनको मौका दें कि वो अपनी चीज़ों को वहाँ पे कलेबरेट करें, और मल्टीपल डाइवर्सिटी को लाने का मकसद और इस महीने में मनाने का मकसद भी यही है कि हम सब लोग जो हैं मुख्तलिफ़ सकाफ़त के लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे तमाम सकाफ़तों को हमारी सकाफ़त के बारे में जानना और दूसरी सकाफ़त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप मिलजुल के अपनी जो है खुशियों को दुबाला कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बसंत जो जो लाहौर होती है उसका कोई मुकाबला हम कर सकेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शायद नायाब बात ये थी कि जब मीम्स बनी इसके ऊपर बसंत के ऊपर, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र जो है वो जेंजी का हुआ। जेंजी वो जनरेशन है जिसने शायद बसंत देखी नहीं है, और गुड्डी उड़ाने का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो उनको शायद पता भी नहीं है कि गुड्डी कैसे उड़ाई जाती थी, उसमें तरावें कैसे डाली जाती थी, उसके ऊपर बहुत सारी मीम्स बनी, किस तरह पकड़नी है, कैसे हवा का रुख चेक करना है और गुड्डी को उड़ाना कैसा है। तो एक इब्रार ने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है वो गाना बनाया था और जेंजी का उसमें जिक्र किया था। तो हम अभी जो है मैं जेंजीज़ को ये नहीं कहना चाहता कि उन्हें कुछ नहीं आता, आजकल का जो जो सिखाने वाला टीचर है वो सबसे बड़ा वो यूट्यूब है, आप जो मर्ज़ी सीख लें वहाँ से खड़े होके और वहाँ से सोच के, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, जो प्रैक्टिकल खुद करके सीखने का मज़ा है, और जिन्होंने एक यूट्यूब बनाई है कि मैं वीडियो बनाई है कि उसको कैसे उड़ाना, उसने तो पहले खुद उड़ाई है, और हम उस जनरेशन में से हैं कि हमने खुद वो मज़ा लिया है और मांझा भी लगाया है और डोरी बनाई है, लेकिन अभी हम ज़रा थोड़ी सी तारीफ़ें जेन ज़ी की भी सुनते हैं।

और म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो बसंत की गुड़ियों के साथ जो है वो त्यौहार के साथ चलती हैं, और ये हर साल जो है वो इसकी जो है वो गाने इसके चला करते थे। लेकिन अब भी फ्रिया प्रवेश का जो गाना है वो उसका अभी भी कोई सानी नहीं है। जो है उन्होंने जो वो गाना एक बना लिया, शायद वो मेरे ख्याल से अभी तक, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम कौन से सॉन्ग्स चलाएं और बताएं और अगले प्रोग्रामों में कौन से चलाएं। और मेरा ख्याल है जो फ्रिया परवेज़ का गाना था वो अभी भी बहुत खूबसूरत और मेरा ख्याल है बसंत के हवाले से वो एवर लास्टिंग है। हमारा वक्त हो गया 1:25, वक्त का जो दौरानिया है वो सिर्फ अब कुछ लम्हों का रह गया है। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो हमारे जो बसंत जश्न बहारा काइट फेस्टिवल है उसमें तशरीफ़ लाएं। 28 जून को वो होने जा रहा है रोटरी पार्क में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होगा, और उसमें फ्री किड्स एक्टिविटीज़ हैं, बाउंसी कैसल्स हैं, और उसके अलावा जो है वो उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, खाना है, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स हैं मौजूद होंगे। तो आप सबकी आमद जो है वो हमें उसका इंतज़ार रहेगा। यूं जो चलते चलते वक्त जो है वो यूं भी गुजरता जाएगा, लेकिन हम आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी हमारे पास कुछ वक्त हैं, आपने वक्त निकालना है, और क्योंकि वो हमारा अपना प्रोग्राम है और उस अपने प्रोग्राम को हमने चार चांद लगाने हैं, और चांद चार लगाने के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और गाना सुनते हैं, गुड्डी लौर दी, और ये इसमें इनके बगैर जो है वो पंजाबी तड़के का काम पूरा नहीं होता, और वो हैं सिर्फ साहिर अली बग्गा।